0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के पसंदीदा रेडियो स्टेशन 101.5 एफएम रिच एंड रियल पर, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट गुरप्रीत कौर, आपके पसंदीदा हिंदी कार्यक्रम प्रिया भारती में। और हमारे साथ आज टेक्निकल सपोर्ट में है नीला श्री जी। तो रविवार की इस हसीन दोपहर में आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है काजल भट्ट जी।
1: धन्यवाद गुरप्रीत जी।
0: एक ऐसी शख्सियत जो हर रोज़ नन्हे मुन्नों की दुनिया को संवारती है, उन्हें हंसना खेलना और सीखना सिखाती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड केयर और पेरेंटिंग पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफ़र बहुत ही मज़ेदार और जानकारी से भरपूर होने वाला है।

0: तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाना छोटा बच्चा जान के, जो कि आदित्य नारायण जी ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया है, बहुत ही पसंद आया होगा। और अब चलिए हम बात करते हैं काजल जी से। तो काजल जी, आप अपने आप को हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, फिर से धन्यवाद। और मुझे सबसे पहले तो मैं रेडियो एडिलाइड प्रिया भारती 101.5 FM को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये आज का अवसर दिया और आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। सो मैं आपके जो भी सवाल है चाइल्ड केयर रिलेटेड, जो जो पेरेंट्स को होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूसरों की केयर में रख रहे हैं, सो एज अ पेरेंट मैं उनकी इनसिक्योरिटी समझ सकती हूँ। सो मैं वो करूँगी कि आपके सवालों के अच्छी तरह से जवाब दे सकूँ। गो।
0: तो काजल जी, हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताइए, और ये भी बताइए कि आपने चाइल्ड केयर एजुकेटर बनने का फैसला क्यों किया।
1: हाँ, तो मेरा नाम है काजल अचल भट्ट और मैं यहाँ पिछले 18 सालों से एडिलाइड ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने एक छोटा से प्यारे परिवार के साथ रह रही हूँ, जिसमें मेरा पति, मैं और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। चाइल्ड केयर एजुकेटर बनने के लिए मैंने, जब मेरा बेटा छोटा था तब हम उसके लिए चाइल्ड केयर स्टार्ट करवाना था, तो उसके लिए हम अलग अलग चाइल्ड केयर में जा रहे थे। तो जब मैं जा रही थी उसके लिए केयर ढूंढने के लिए, तब मैंने देखा कि लाइक छोटे छोटे बच्चे किस तरह से खेल खेल में सीखना भी कर रहे हैं, और जो भी उनके एडुकेटर्स हैं वो सिर्फ उनको केयर नहीं, लेकिन केयर के साथ भी जो भी उनको ज़रूरी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आई ऑल्सो, फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे चाइल्ड केयर में जाना है, तो वहाँ से मैं भी ऐसा एज अ पेरेंट नई नई चीज़ें सीख सकूँ। सो
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको किस तरह से ये प्रोत्साहन मिला कि आप चाइल्ड केयर की एजुकेटर बने। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप एक अपना पसंदीदा गाना हमें बताइए, जो कि हम आज हमारे श्रोताओं को सुनाएं। आप बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: सो मेरा फेवरेट सॉन्ग जो मुझे अच्छा लगता है वो है चंदा चमके चम चम।
0: चलिए फिर आज हम काजल जी की पसंद का गाना सुनते हैं। तो गाने के बोल हैं चंदा चमके चम चम, जो कि बाबुल सुप्रिया ने गाया है अपनी मधुर आवाज़ में। तो चलिए इस गाने का हम आनंद लेते हैं।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

0: अच्छा तो ये बताइए काजल जी, जहाँ तक मुझे अनुभव है कि छोटे बच्चों की दुनिया बहुत ही अलग होती है, एक चाइल्ड केयर एजुकेटर के रूप में आपका एक सामान्य दिन कैसे बीतता है?
1: सो जिस तरह आपने बताया कि छोटे बच्चों की दुनिया बहुत ही अलग होती है, जब मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ, जब भी मैं दिन स्टार्ट करने के बाद रूम में पाँव रखती हूँ और बच्चे बस वो खिलखिला के हंसते हंसते मेरा नाम लेके मेरे पास दौड़ के आ जाते हैं और मुझे वो प्यारी सी झप्पियाँ देते हैं। वो मोमेंट इतना बढ़िया होता है कि मैं सोचती हूँ कि एवरी डे मैं हैप्पीली वॉन्ट टू गो देयर एंड स्पेंड टाइम विद देम। सो उस तरह से मेरा दिन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, हंसते हंसते पूरा
0: चलो
1: दिन
0: ये
1: बीत
0: तो
1: जाता है।
0: बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप अपना दिन स्टार्ट करती हैं। अच्छा आप हमें ये बताइए कि आजकल की पेरेंटिंग के अंदर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा जो डर है, जो उनका मेन कंसर्न आप कह लो, कि वो स्क्रीन टाइम है। तो क्या आप चाइल्ड केयर में बच्चों को स्क्रीन टाइम देखने देते हैं?
1: स्क्रीन टाइम चाइल्ड केयर में स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं होता है, क्योंकि मेनली तो हम प्ले बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा भार देते हैं और प्ले बेस्ड लर्निंग वो चीज़ है कि वहाँ पे हम बच्चे सीखते भी हैं और हम जो भी सिखाते हैं वो सारा खेल के रूप में हम सिखाते हैं। स्क्रीन आईपैड हम गाना बजाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे उनको प्रॉपरली वीडियो जिस तरह से घर में हम देखते हैं उस तरह से बच्चे यूज़ नहीं कर सकते हैं।
0: चलिए ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि एज अ पेरेंट अगर मेरा भी बच्चा चाइल्ड केयर जा रहा है तो मैं चाहूँगी कि वो मोबाइल फ़ोन, आईपैड, टीवी इन सब चीज़ों से दूर रहे, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है बच्चे को चाइल्ड केयर भेजने का, है
1: हाँ
0: ना।
1: वो आपने सही बोला।
0: तो आजकल ये जो प्ले बेस्ड लर्निंग है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, खेल बच्चों की दिमागी और सामाजिक विकास के लिए कैसे मदद करता है?
1: मेनली बेसिकली तो प्ले बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट वो है कि स्कूल में तो बच्चे स्ट्रक्चर लर्निंग सीखने ही वाले हैं, कि जहाँ पे वो लोग उनका प्रॉपर पीरियड और टाइम होता है कि डिसाइडेड कि इस टाइम पे वो मैथ सीखेंगे, इस टाइम पे उनको साइंस सीखना ही सीखना है। लेकिन प्ले बेस्ड लर्निंग इसी वजह से, क्योंकि अर्ली स्कूल के पहले जो हम अर्ली एज बोलते हैं वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू ग्रो अप, और अगर उसमें भी हम स्ट्रिक्ट लर्निंग लाएंगे और प्ले अंदर नहीं डालेंगे देन बच्चे वहाँ से ही पढ़ाई के नाम से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। उसी वजह से हम चाइल्ड केयर में भी हम मैथ्स भी करवाते हैं, इंग्लिश भी करवाते हैं, लैंग्वेज भी करवाते हैं, साइंस भी होता है, बट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्ले। हम सबको प्ले में इंक्लूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम लिटरेसी किस तरह से सिखाते हैं, तो हम गाना गाते हैं, ABCD ABCD सॉन्ग गाते हैं या तो फिर एक्शन सॉन्ग करते हैं, उस इस तरह से बच्चे ABCD भी सीखते हैं, तो लिटरेसी भी आ जाती है और इंग्लिश भी वो सीखने लगते हैं।
0: ओ ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया। आप मुझे बताइए कि आप चाइल्ड केयर में क्या बच्चों की कुछ सेंसरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि चाइल्ड केयर बहुत छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है।
1: हाँ चाइल्ड केयर बेसिकली जब बच्चा 6 वीक से होता है तभी से अर्ली एज स्टार्ट हो जाता है। बट इट डिपेंड करता है कि पेरेंट्स को कब से बच्चों को चाइल्ड केयर में डालना होता है। कई फैमिलीज ऐसी होती है कि एज हमें पता है कि यहाँ पे दे डोंट हैव एनी फर्दर सपोर्ट फ्रॉम देयर एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक छोटी सी फैमिली होती है, मॉम डैड एंड बच्चे, तो उस हिसाब से उनको कई बार जल्दी चाइल्ड केयर स्टार्ट करना होता है। उस टाइम पे हम बच्चे और बच्चों को सेंसरी नॉट ओनली टू डेवलप द सेंसेस बट कई बार रेगुलेशन और सोशल इमोशनल रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी बच्चों को सेंसरी प्ले बहुत ही जरूरी होता है।
0: ओके ये तो चलिए आपसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम काजल जी से अपनी ये बातचीत जारी रखेंगे, अभी सुनते हैं हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत। गीत के बोल है बच्चे मन के सच्चे, ये लता मंगेशकर जी ने अपनी बहुत ही मधुर आवाज़ में गाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस गाने को अच्छे से इंजॉय करेंगे। चलिए

0: तो चलिए दोस्तों, इस संगीत की दुनिया से बाहर निकलकर वापस हमारी जानकारी की दुनिया में आते हैं और काजल जी से एक और सवाल पूछते हैं। तो काजल जी, हमें ये बताइए कि जब छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, रोते हैं या गुस्सा होते हैं, तो एज अ एजुकेटर आप उस रूप में आप उस बच्चे को किस तरह से शांत करती हैं? आप कोई अपना प्रस्ताव बताइए ताकि जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं वो उस चीज़ को अपना सकें और अपने बच्चों को संभाल सकें।
1: हाँ, तो जब बच्चे रोते हैं और तो एज एन एडुकेटर हमारी पहली कोशिश वही रहती है कि हम उनको तो पहले शांत करते हैं, उनको झप्पी देके शांत करने का ट्राई करते हैं। लेकिन कई बार जो बड़े बच्चे होते दे डोंट वांट टू कम एंड गिव यू अ कडल दैट मोमेंट, तो उस टाइम पे हम जस्ट जस्ट उनको उनकी स्पेस देते हैं और उनसे कीप टॉकिंग विद डैम के जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो रो रहे हैं, कि वॉट्स द रीज़न वाई दे आर वेरी अपसेट। इन दैट मोमेंट ऑल्सो वी आर गिविंग और ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट दैम, उनको उनकी मन पसंदीदा चीज़ें दे के हम उनका टाइम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो गुरप्रीत जी, आपने जो सवाल बोला कि किस तरह से जब बच्चे रोते हैं और गुस्सा करते हैं तो हम एज एन एडुकेटर क्या करते हैं, तो उस मोमेंट में हम पहले तो उनको काम डाउन करने का करते हैं, और वैसे भी बच्चे हमारे केयर में ज़्यादा रहते हैं तो हमें उनकी पसंद नापसंद पता होती है कि और उनका वो स्वभाव भी हमें पता होता है कि बच्चा किस चीज़ के लिए रो रहा है। शायद वो खिलौना एक्सचेंज करने के लिए रो रहा है या तो फिर भूख लगी होती है उसकी वजह से रो रहा है, तो उस केस में हम उनको उनकी पसंदीदा चीज़ें दे के उनको डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं, कडल देते हैं, उनके साथ बातें करते रहते हैं।
0: चलिए, ये तो आपने अच्छा बताया। तो अभी आपने जैसे कहा कि बच्चा आपको कई बार लगता है कि वो किसी खिलौने के लिए रो रहा है, तो अगर मानिए कि दो बच्चों में आपस में किसी खिलौने को लेकर झगड़ा हो गया, तो उस स्थिति में आप उस स्थिति को कैसे संभालते हैं?
1: कई बार ये चीज़ें होती रहती है और दिन में तो कई बार होती है कि दो बच्चों को एक ही चीज़ चाहिए और फिर उस चीज़ के लिए आपस में वो होना भी रोना भी स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे हम पहले तो बच्चों से शेयरिंग की बात करते हैं, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग, दैट्स वो भी हम बच्चों को यहाँ वहाँ पे सिखाते हैं कि और फिर उनको टाइम देते हैं कि 2 मिनट 5 मिनट तू प्ले कर, उसके बाद शेयर करके दूसरे का टर्न। और कई बार बच्चे समझ भी जाते हैं और उस हिसाब से एक दूसरे के साथ शेयर करके प्ले भी स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी तरह से हम उन लोगों को डाइवर्ट करते हैं और शेयरिंग भी सिखाते हैं।
0: चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आप बच्चों को उनकी बारी बारी खेलने का प्रोत्साहित करती हैं कि वो दोनों बारी बारी एक खिलौने से खेले और लड़े नहीं, जिसको हम शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो अब आप हमें मुझे ये बताइए कि चाइल्ड केयर में बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होती है, तो बच्चों के लिए एक सुरक्षा और सकारात्मक माहौल आप कैसे तैयार करती हैं?
1: गुरप्रीत जी, आपने ही आपके सवाल में ही जवाब दे दिया कि आपने बोला कि बच्चों की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता होती है, तो वही
0: बिल्कुल
1: हमारा मोटो भी बोल सकते हैं कि बच्चे ही हमारे लिए मेन रीजन है। हम उनकी सुरक्षा के लिए और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, जब भी वो बच्चा हमारे सेंटर में स्टार्ट करता है उसी दिन से हम उनको वो पॉजिटिव माहौल देना स्टार्ट करते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है, पेरेंट्स की नीड्स होती है, वो सारी इकट्ठा करके हम वो सेफ एंड सिक्योर माहौल बच्चे के लिए क्रिएट करते हैं। वो उसे हम की एडुकेटर रिलेशनशिप भी बोलते हैं कि जहाँ पे बच्चे को बच्चा खुद ही अपना एडुकेटर चूज करता है कि मुझे किसके पास ज़्यादा रहना चाहते हैं, उस तरह से हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं और इस तरह से हम सेफ एंड सिक्योर बेस देते हैं बच्चों और फैमिली को भी।
0: वाह, ये जानकर तो मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही है कि आप बच्चे को चुनने देते हैं कि उसको किस एजुकेटर के साथ अपना रिश्ता ज़्यादा सिक्योर लगता है, यही कहना चाहती हैं ना
1: हाँ
0: आप?
1: हाँ
0: वाह भाई, फिर तो चाइल्ड केयर सच में अच्छी जगह है। काश मेरे बच्चे छोटे होते तो मैं भी उनको ज़रूर भेजती। तो चलिए दोस्तों, ये बातचीत बहुत ही मज़ेदार लग रही है मुझे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसको मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हम एक गाना सुनते हैं और इस म्यूज़िक का हम आनंद लेते हैं। तो गाने के बोल हैं, पापा मेरे पापा। सोनू निगम जी ने इसको अपनी मधुर आवाज़ में गाया है और उनके साथ श्रेया घोषाल जी हैं इस गाने में। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं।

0: पापा मेरे पापा बहुत पसंद आया होगा, जो कि श्रेया घोषाल जी की मधुर आवाज़ में था। आई होप कि आप श्रेया घोषाल जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्हें हमने इंडियन आइडल में सुना है और आगे भी हम उनके गाने सुनेंगे। तो चलिए हम ये जो हमारी जानकारी का सिलसिला चल रहा है आज काजल जी के साथ, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। और काजल जी को आज मैं अपनी तरफ से एक अलग से सवाल पूछना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपने काजल जी बताया कि आप बच्चों को अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो बच्चे आपके साथ रहते हैं, है ना? तो उन बच्चों के लिए आप क्या करती हैं जो बच्चे पहली बार आपके सेंटर में या आपके केयर में आते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते? क्योंकि नए बच्चे आते हैं तभी वो पुराने बनते हैं। तो जब बच्चा नया बच्चा आता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं, तो आप क्या करते हैं ऐसा कि पेरेंट्स और आपके बीच में बॉन्ड बने या आप उस बच्चे के बारे में जाने? तो आप उसको क्या, उस स्थिति में आप कैसे, मतलब उस स्थिति को हैंडल करती हैं?
1: हाँ, तो जब सो गुरप्रीत जी, इन जब बच्चा नया नया हमारे सेंटर में आता है और हम उनसे फैमिलियर नहीं होते, बच्चा हमसे फैमिलियर नहीं होता, फैमिली ऑल्सो फैमिलियर नहीं होती, सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बच्चा एक्चुअल हमारे साथ स्टार्ट जब करता है उसका डे, उससे उसके पहले हम उन लोगों को प्ले, कम एंड प्ले वाला ऑप्शन देते हैं, उसको चाइल्ड केयर की टर्म में ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। सो उस टाइम पे, ओरिएंटेशन के टाइम पे बेसिकली क्या होता है, बच्चा आता है पेरेंट्स के साथ, वो जो भी रूम में जाने वाला होता है, जो भी एज ग्रुप में वो बच्चा जाने वाला होता है, उस रूम में वो बच्चा अपना टाइम स्पेंड करता है। डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर पे कि सेंटर कितना टाइम देता है। कई बार वो जो प्ले एन एक घंटे का होता है, उस ड्यूरिंग दैट पीरियड वो बच्चा वहाँ पे रहता है, और जो भी रूम एडुकेटर्स होते हैं वो उस टाइम पे बच्चे के साथ खेलते हैं, पेरेंट्स के पास से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलता है, अगर वो अपसेट होता है तो बच्चे को किस तरह से हम काम डाउन कर सकते हैं, अगर उनका कोई, उसका कोई कंफर्टर होता है, सो उस तरह की सभी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं जब बच्चा हमारे पास कम एंड प्ले के लिए आता है। और उसी टाइम पर बच्चा भी फैमिलियर होने लगता है धीरे धीरे कि ये एडुकेटर मेरा रूम का होगा, ये बच्चा और मैं इस माहौल में आके प्ले करने वाला हूँ। और ड्यूरिंग दैट टाइम पेरेंट्स के साथ भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो पेरेंट्स को भी वो पॉजिटिव रिलेशनशिप का स्टार्ट होने लगता है कि दे आर स्टार्ट गेटिंग कि हाँ, मेरा बच्चा यहाँ पे सुरक्षित रहेगा।
0: ओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने काजल जी। काजल जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। देखिए, हम रहते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, हम अपने भारत देश से दूर हैं, पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं, और जब अर्ली एज में, जैसे कि आपने बताया कि चाइल्ड केयर में बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चे छोड़ते हैं ताकि वो वहाँ कुछ सीख सके, उनका अच्छा केयर हो सके, तो जैसे बच्चे की नेशनैलिटी जो है वो किसी और देश से है, उस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है मानिए, या उस बच्चे को हिंदी नहीं आती है, तो ऐसी सिचुएशन में इतने छोटे बच्चे को आप किस तरह से, मतलब, हैंडल करती हैं? क्योंकि वो बच्चा भाषा नहीं जानता, उसके घर पे दूसरी भाषा यूज़ होती है, है ना? आप समझ रही है मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। तो मानिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए कि मानिए अगर बच्चा नेपाल से है, है ना, या बच्चा कोई और लैंग्वेज बोलता है, जैसे श्रीलंका से है तो उसके घर पे वहाँ की लैंग्वेज बोली जाएगी, तो उस कंडीशन में, उस, मतलब, उस वातावरण को आप किस तरह से बच्चे के लिए वेलकमिंग बनाती हैं?
1: तो जब भी बच्चा, आपने बोला कि हमारे जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे हैं कि जो डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके लिए इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेज, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब भी वो, उनका जब ओरिएंटेशन का पीरियड होता है, उस टाइम पे हम पेरेंट्स के पास से जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उनकी लैंग्वेज के, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूँ कि कोई हिंदी बच्चा, हमारा इंडियन बच्चा एनरोल हो रहा है, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप हमें बेसिक वर्ड्स जो भी होते हैं कि वाटर, कम, गो, उनकी लैंग्वेज के अंदर वो वर्ड्स हम ले लेते हैं, और व्हेन द बच्चा जब भी स्टार्ट करता है तो वी स्टार्ट पुटिंग दैट वर्ड्स, तो बच्चों को भी लगता है कि नहीं, कि इट्स आई एम बिलोंग, इस तरह से हम सारे कल्चर को इंक्लूडिंग करके बच्चे को भी पॉजिटिव एंड सेफ भेज देते हैं।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है काजल जी, आपके इस उत्तर से मुझे ये पता लगा कि आप सिर्फ बच्चों को सिखाती नहीं हैं, आप भी सीखती हैं।
1: हाँ सही है, सही है कि आपने सही बोला कि हम भी सीखते हैं। और इन अगर मैं बात करूँ तो हम हमारे बड़े रूमों में जो किंडी प्री किंडी रूम है उसमें हम एवरी मॉर्निंग ग्रुप टाइम करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे गुड मॉर्निंग बोला जाए, तो उस तरह से भी बच्चे सीखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेज।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी आपसे थोड़े से टिप्स लूँगी कि हम दूसरी भाषा में कम से कम नमस्ते ही कैसे बोलना सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, काजल जी के साथ हमारी ये बातचीत जो है वो जारी रहेगी। अब हम अगले गाने का आनंद लेते हैं और हमारे इस गाने के बोल हैं, जागो जागो जागो सुबह हो गई। ये गाना आदित्य नारायण जी ने गाया है, चलिए इस गाने का आनंद लेते हैं।
2: जागो जागो जागो सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई।

0: भाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: उससे तो आए।
1: अरे अरे ठीक से पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही कर रहे क्या है?
2: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग?
3: अरे छोटू, अरे तेरी तो
2: अपन को हाथ नहीं लगाना।
4: तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है प्रिया भारती 101.5 FM पे। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट गुरप्रीत कौर। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाना जागो जागो सुबह हो गई बहुत ही पसंद आया होगा। अब इस गाने को सुनने के बाद हम फिर से अपनी वार्तालाप जो है शुरू करते हैं काजल जी के साथ। और अभी जो हमने उनसे पूछा था मल्टी कल्चरल बच्चों के बारे में, लाइक कि मल्टी कल्चरल कंट्री है, अलग अलग देशों से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, मुझे अभी कुछ और पूछना है उनसे क्योंकि मुझे ये टॉपिक जो है बहुत ही पसंद आया है। तो काजल जी आप मुझे ये बताइए कि आप इस चीज़ में कुछ और ऐड करना चाहेंगी कि मल्टी कल्चरल बच्चों को, चलिए आप अक्षर तो आप पेरेंट्स से पूछ लेती हैं जो बेसिक शब्द हैं, उसके अलावा आप क्या, आप लोग क्या करते हैं?
5: हाँ मुझे इसमें ज़रूर से बोलना है ज़्यादा, क्योंकि हाँ आपने जिस तरह से बताया कि हम बेसिक वर्ड्स तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन कई बार बेसिक वर्ड्स इतने भी ये सफिशिएंट नहीं होते हैं कि हम बच्चे को लाइक पूरा वो माहौल दे सके। सो उस हिसाब के लिए मैं जब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे हम बहुत ही लकी है कि हमारे वहाँ पे डिफरेंट कंट्री के एडुकेटर्स भी काम करते हैं। हमारे वहाँ नेपाली भी है, एडुकेटर्स बिलोंग्स टू जापान से भी है, चाइना से भी है। सो कोई भी जब भी बच्चा आता है, लाइक देयर इज कोई बच्चा चाइनीज बच्चा है, अलोंग विद दैट स्मॉल वर्ड्स जब भी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं एडुकेटर स्वाप कर लेते हैं। तो वो चाइनीज एडुकेटर जिस भी रूम में है वो वहाँ पे चला जाता है और उसके जगह पे दूसरा एडुकेटर आके उसको कवर करता है। उस हिसाब से वो बच्चे की जो भी टेक केयर है वो भी नीड्स पूरी हो जाती है और दूसरे रूम की भी नीड पूरी हो जाती है कि जहाँ दूसरे बच्चों को भी ज़रूरत है। सो लकीली वी आर वेरी गुड। और जो डाइवर्स कंसेप्ट है कि डाइवर्सिटी एंड द मल्टीकल्चरलिज्म, तो वो हम इस तरह से बच्चों को भी सिखाते हैं और बच्चे भी देखते हैं और दे आर ऑल्सो फीलिंग बिलोंग्स एंड रिस्पेक्टेड।
4: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आजकल के ये जो हमारा आजकल का वातावरण चल रहा है, हाँ। जो हमारी आजकल सोसाइटी हो गई है कि सभी पेरेंट्स मोस्टली जो हैं वर्किंग हैं,
5: हाँ।
4: तो वर्किंग पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर बच्चों को चाइल्ड केयर छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि गिल्ट फील करते हैं कि भाई वो काम पे जा रहे हैं और बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन माता पिता को जो अपने बच्चे आपकी केयर में छोड़ते हैं, आप उनको किस तरह से मतलब आप उनसे बातचीत करती हैं, उनको ये फील कराती हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें बिना किसी फिक्र के, तो उसके लिए आप क्या करती हैं?
5: सो गुरप्रीत जी मुझे वही कहना है कि एज अ मदर मेरे भी दो बच्चे हैं और वो दोनों भी चाइल्ड केयर में जाते थे, तो एज अ पेरेंट मैं दूसरे पेरेंट्स की कंसर्न भी समझ सकती हूँ कि ये इट्स नॉट ईजी कि अपने बच्चे को पूरे दिन के लिए कहीं और पे और जगह पे रखना और हम काम करने जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। बट सो उन हिसाब इन दैट रिगार्ड्स कि हम क्या करते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन और कन्वर्जन करते रहते हैं। जब भी जब बच्चा नया नया हमारे साथ शुरू होता है उस टाइम पे हम कर्टसी कॉल देते हैं पेरेंट्स को कि किस तरह से बच्चे का दिन जा रहा है, उसकी पिक्चर्स हैप्पी मोमेंट्स वाली पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अच्छी जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ प्ले करने में एंगेज है उस हिसाब से प्ले पिक्चर्स खींचते हैं ऑल द हैप्पी मोमेंट्स की, बच्चा शांति से सो रहा है, बच्चा अपने नए दोस्तों के साथ खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो सारी हम कंटिन्यूसली पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। और हमारे पास और हर एक चाइल्ड केयर के पास अपनी ऐप होती है कि जहाँ पे पेरेंट्स वो पिक्चर्स देख सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हम वो पॉजिटिवनेस और रिलेशनशिप बनाते हैं।
4: अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप पेरेंट्स को भी पूरा तसल्ली दे रहे हैं ताकि वो अपना काम भी कर सकें और अपने बच्चे को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि वो सही और सुरक्षित हाथों में है,
5: सही
4: है ना काजल जी? आप तो बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं। तो चलिए काजल जी के साथ हमारी ये वार्तालाप जारी रहेगी। अब हम एक और गाने का आनंद लेते हैं। गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं, चक धूम धूम, जो कि लता मंगेशकर जी ने गाया है और उदित नारायण जी उनके साथ उस गाने को गाते हुए हमें सुनाई देंगे।
5: ये तो मेरा भी फेवरेट गाना है गुरप्रीत जी।
4: चलिए फिर ये गाना सुनते हैं और

0: तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चक धूम धूम का तो हमने खूब आनंद लिया है। अब हम वापस चलते हैं और काजल जी से हम अपनी ये जानकारी की वार्तालाप शुरू करते हैं। तो काजल जी, आप हमें कुछ नया बताइए जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से, या कुछ भी नया जो चाइल्ड केयर में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो नया बच्चों के लिए कुछ है, कुछ ऐसा है सुनने में आया आ रहा है कुछ तो?
1: हाँ गुरप्रीत जी, मेरे पास एक बढ़िया चक तुम तुम वाली न्यूज़ है कि
0: बताइए।
1: जो अभी चाइल्ड केयर में आई हुई है, सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, और आपने भी शायद देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं चाइल्ड केयर के बाहर। फ्लाइंग स्टार्ट नाम का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सो फ्लाइंग स्टार्ट इज बेसिकली द प्रोग्राम। सो आपने शायद सुना होगा कि पहले गवर्नमेंट जो किंडरगार्टन प्रोग्राम होता था वो 4 साल से स्टार्ट होता था।
0: हाँ जी।
1: और वो किंडरगार्टन प्रोग्राम बेसिकली होता है कि बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना। उस प्रोग्राम के अंदर मेनली द फोकस होता है लिटरेसी न्यूमरेसी, जो भी स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है बच्चों के लिए, वो प्रोग्राम्स किंडरगार्टन प्रोग्राम में कवर होता है। तो पहले अनटिल लास्ट ईयर 4 साल से ही वो किंडरगार्टन प्रोग्राम शुरू होता था, बट गवर्नमेंट ने ये नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है फ्लाइंग स्टार्ट। उसमें नाउ पेरेंट्स के लिए हैप्पी न्यूज़ वो है कि जब बच्चा 3 साल का होता है, देन आफ्टर दैट चाइल्ड इज वो बच्चा किंडरगार्टन के लिए एलिजिबल हो जाता है। सो नाउ पेरेंट्स को 4 साल के लिए वेट नहीं करना है किंडरगार्टन प्रोग्राम के लिए, 3 साल से ही वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है। तो चाइल्ड केयर में भी वो प्रोग्राम्स आ चुके हैं, और गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स भी दे रही है कि फॉर एग्जांपल म्यूजिक थेरेपीज होती है, नेचर प्ले होता है। सो

0: प्रोग्राम द फ्लाइंग स्टार।
1: ये तो बहुत ही अच्छी आपने खबर सुनाई है कि कुछ नया हो रहा है चाइल्ड केयर में, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नया होना भी चाहिए, है ना? बच्चे बेचारे नहीं तो
0: बोर हो जाते हैं।
1: ये तो बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं, एक गाना और हम सुन लेते हैं, तब तक मैं थोड़े और सवाल सोच के रखती हूँ आपके लिए। तो अब हम गाना सुनते हैं, बम बम बोले। गाना जो गाया है वो शान ने गाया है और ये आमिर खान जी की मूवी का गाना है। तो चलिए इस गाने का आनंद लेते हैं, बम बम बोले, मस्ती में डोले।
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकि चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुक बुकुरे टुक बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़दुम चगड़दुम चिकि चक चो।
3: शी

0: सो हम इस मधुर संगीत का, मनोरंजन का अनुभव हमने ले लिया है, तो अब हम चलते हैं वापस. और अब समय मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है, अगर हमें समय ने इजाज़त दी तो हम गाना सुनते रहेंगे. लेकिन हम काजल जी से एक आखिरी बात पूछना चाहते हैं कि काजल जी, आपका जो आजकल की पेरेंटिंग है या जो एजुकेटर्स हैं, आपका कोई संदेश है उनको देने के लिए?
1: हाँ गुरप्रीत जी, ज़रूर मैं ये संदेश सभी पेरेंट्स और एजुकेटर्स को देना चाहती हूँ कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, और वो हमारे पास आते हैं खेलने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए. सो एज एन एजुकेटर ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको वो स्ट्रॉन्ग बेस, पॉजिटिव बेस दे, वो जो जहाँ से वो अपनी सेल्फ हेल्प स्किल या लिटरेसी, सोशल स्किल, इमोशनल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें सीख सके, और वो सारी चीज़ें सीख के वे अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ते रहें. सो पेरेंट्स को भी, और पेरेंट्स के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि अभी फ्लाइंग स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द ईयर ऑफ 3, तो वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है. वह जहाँ पे पेरेंट्स को डिफरेंट किंडी में जाके बच्चों के लिए वो नहीं करना पड़ेगा, वही चाइल्ड केयर में रह के वो बच्चा अपनी लिटरेसी, न्यूमरेसी, सोशल स्किल, जो भी उस

0: को स्कूल के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें वो वहाँ से ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये सारे प्रोग्राम हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, तो वो पेरेंट्स घर पे भी वो बच्चों के साथ वो चीज़ें यूज़ करके हम वो स्कूल के लिए उनको भी रेडी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स और एडुकेटर्स, चाइल्ड केयर एंड हाउस, दोनों एक ही पेज पे रहेंगे और उस तरह से हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बेस दे सकेंगे जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सो बस मुझे यही कहना था गुरप्रीत जी।
1: चलिए, आज आपसे बात करके, आपसे इतनी सारी जानकारी लेके, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं ने भी इस बातचीत का बहुत ही मज़ा लिया होगा। पर मैं भी कुछ बोल बोलना चाहती हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो, कि मुस्कुराते हुए चेहरे, मासूम सी आँखें और वो प्यारी सी तोतलाती आवाज़,
0: बाबा
1: बच्चों की ये दुनिया भी कितनी अजीब होती है ना काजल जी।
0: सही में, सही में।
1: और इस खूबसूरत दुनिया को सही दिशा देना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना हर माता पिता और शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो हमारी बातचीत हमने काजल जी के साथ साझी करी है, वो सबको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा, आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। आगे हम फिर से किसी और शो में, किसी और दिन, इसी विषय पर, बच्चों की अपब्रिंगिंग के विषय पर हम बात करेंगे। सो दोस्तों, हम आपसे मिलते रहेंगे हर प्रथम रविवार, हर महीने के प्रथम रविवार को 1 से 2 101.5 FM रेडियो पे, रिच एंड रियल, आपका प्यारा शो प्रिय भारती, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट गुरप्रीत कौर। चलिए, अब हम धन्यवाद करते हैं हमारी आज की टेक नीला श्री जी का, जिन्होंने ये शो हमें करने में बहुत मदद करी है। और हम अब गाना सुनते हैं क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। तो जैसे कि आज हमने बच्चों के टॉपिक पे बात करी है, तो आज हम बच्चों को एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि जमे रहो, दुनिया का नारा, जमे रहो, जमे रहो, तो तुम कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचोगे। और ये गाना गाया है विशाल डडलानी ने। तो चलिए, इस गाने का हम आनंद लेते हैं और अगर हमें समय मिला तो हम एक गाना और सुनते हुए जाएंगे। और साथ ही हम अपनी काजल जी का, जो कि आज की हमारी बहुत ही खास मेहमान हैं, जिन्होंने हमें इतनी जानकारी दी है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और उन्हें भी विदा देते हैं। और फिर किसी शो में मिलने की आस के साथ आपसे फिर मिलेंगे काजल जी।
0: धन्यवाद गुरप्रीत जी, और अगेन वंस अगेन धन्यवाद रेडियो एडिलाइट, प्रिय भारती 101.5 FM कि मुझे ये अवसर देने के लिए, जहाँ पे मैं जितनी भी बन सके उतनी मैंने इंफॉर्मेशन चाइल्ड केयर के बारे में बताई और पेरेंट्स को हेल्पफुल होगी वही मैं आशा करती हूँ।
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद काजल जी। तो चलिए, अब हम ये गाना सुनते हैं, जमे रहो।
2: कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट।